0: Hey, New Orleans. You have found the right station on the dial, 90.3.
1: ये मुझे क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? कुछ समझ में नहीं आता.

कि मेरे बुरे वक्त में जब मैं भूखा प्यासा दर दर की ठोकरें खा रहा था, उन्होंने मेरी मदद की थी, मुझे सहारा दिया था, मुझे नई जिंदगी दी थी। तो डॉक्टर साहब, जिंदगी के बदले में दवाओं का खर्च क्या हैसियत रखता है? अच्छा तो डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ, लेकिन अपना वादा मत भूलिएगा। रमाना जी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, वरना मैं अपनी नजरों में खुद गिर जाऊंगा।